0: प्राप्त मारिंग स्वर्ग
1: बापो सुबोल टाटा सुनने का पिले पकड़ाओ
0: यान तन आत्मो तमो तन सिद्ध प्राप्त आनिंग स्वर्ग
1: पांती अनि सुबो सुबो यें सिंग मूले सकन सकन manusia utama singidang lakar mai ke suara.
0: Wah tujuan tu angulati setri ratna.